24 घंटे में से कितने चले गए? 8 घंटे चले गए, बाकी कितने बचे? 16 घंटे बचे। 16 घंटों में से 8 घंटे वो ड्यूटी करता है, काम भी तो करते हैं कि नहीं, खाएंगे पिएंगे कहां से, ड्यूटी भी तो करनी है ना। तो 8 घंटे तकरीबन ड्यूटी का टाइम होता है बगैर ओवर टाइम के, आम ड्यूटी जो होती है। कितनी बाकी बचे? 8 घंटे। इंसान हमाम में बाथरूम कितना वक्त लगाता है 24 घंटों में? 1 घंटा, 1 घंटा काफी है भाई, कहते 1 घंटा। कितने बचे बाकी? 7 घंटे। इन 7 घंटों में जो वक्त मिला है वो 7 घंटे हैं सिर्फ। नमाज में कितने वक्त गुजारते हैं? 1 घंटा तकरीबन। कितने बाकी बचे? 6 घंटे। हमारी जो जिंदगी है ना वो 6 घंटे की, 24 घंटे में। इन 6 घंटों के लिए देखिए इंसान ने क्या किया है, झूठ, फरेब, जुर्म, कत्ल, गारत, अजब बात है, वालदेन की नाफरमानी, रिश्ते को तोड़ना, यानी जो ये वक्त आपको मिला है आप इस वक्त को अच्छे तरीके से गुजार सकते थे। हमारे मसला यह है कि हम वक्त को बुरे तरीके से क्यों गुजारते हैं। 6 घंटे आपको मिले हैं, आप इन 6 घंटों में किसी मरीज की इयादत कर सकते हैं, रिश्ते को जोड़ सकते हैं, सच बोल सकते हैं, इंसाफ कर सकते हैं, दो लोगों में जिनका झगड़ा हो उनकी सुलह कर सकते हैं, वालदेन की फरमाबरदारी के लिए उनको खुश करने के लिए कोई हदिया उनको दे सकते हैं, कोई तोहफा लेके आए, चाहे 2 रियाल का क्यों ना हो उनके लिए लेके आ सकते हैं वो, और उनसे दुआ ले सकते हैं। लेकिन अजब बात है, इस थोड़े से वक्त के लिए इंसान ने अपने इस दुनिया को भी खराब किया है और अपने आखिरत को भी खराब किया है। नींद की हालत बेहतर है या बेदारी की हालत बेहतर है? दानिशों का इख्तिलाफ हुआ है जो बड़े दुनिया के दानिश्वर हैं। एक ग्रोह ने कहा कि बेदारी की हालत बेहतर है, इंसान पैदा ही जागने के लिए हुआ, सोने के लिए थोड़ा हुआ, और जो इंसान सोता रहता है वो माशरे का अच्छा इंसान होता है, सुस्त इंसान होता है और माशरे से अच्छा नहीं समझता। तो बेदारी की हालत बेहतर है क्योंकि इस बेदारी की हालत में इंसान जो है अपने माश को तलाश करता है और दुनिया जो अल्लाह ताला उसके लिए बनाई है उसकी खूबसूरतियों को देखता है, वो अच्छी जिंदगी बसर करता है। नींद भी कोई जिंदगी है, मुर्दा इंसान पड़ा है बिस्तर के ऊपर, किसी चीज को पता नहीं है उसे। दूसरे ग्रोह ने कहा कि नींद बेहतर है, कि अगर नींद ना होती तो फिर बेदारी भी ना होती, अगर नींद ना होती तो इंसान को कोई चीज खूबसूरत ही ना लगती, ना वो आज कमा सकता है और ना ही वो दुनिया किसी खूबसूरत चीज को देख सकता है। तो नींद है तो बेदारी भी है। पहले ग्रोह ने कहा नहीं, बेदारी है तो नींद भी है, आपस में झगड़ा हुआ है, सच्चे कौन है, नींद बेहतर है या बेदारी बेहतर है? जवाब है तफसील। जो बेदारी इबादत हो वो अच्छी है, और जिस बेदारी में नाफरमानी हो उससे तो नींद ही अच्छी है। और जो नींद सोने में अगर नाफरमानी हो, सोने में भी नाफरमानी होती है, तो उससे बेहतर इंसान को फिर नींद ही ना आए। वो कैसे? देखिए हमारा सोना जागना इबादत है, हम जागते हैं। अब जरा गौर कर एक इंसान की जिंदगी में, सुबह उठता है, जाके बाजार की तरफ जाता है, कब्र का तवाफ करता है और अपने माश के लिए निकल जाता है उस कब्र वाले से।